बढ़ के एक खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर, भागा चोर, नाचा मोर, मच गया शोर।

0: गया तुम्हारे साथ?
1: नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फाइल लेने आया था।
0: फाइल लेने यहाँ?
1: यहाँ तो मैं बच्चों का गाना सुनने आ गया।

का शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.